आयाना वजमंता जनैगम आई वद्रे मियो सान फ्रांसिस्को बेरदोना लो सेन्योर आयाल्मा लुइसा दियोस के ते बेरदोनी.